सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 2 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the governing council meeting,
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत

0: 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो चुका है खेती की बातें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आई जानकारी प्राप्त करते हैं पॉली हाउस में खीरे की व्यावसायिक खेती पर। संकलन और वाचन स्वर है सुनीता अग्रवाल का।
3: खेती की बातें में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे पॉली हाउस में खीरे की व्यावसायिक खेती। श्रोताओं, पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी व फूल उत्पादन के उपयुक्त एवं नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसमी सब्जियों व फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही किसान खेती कर पाते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से जहां किसानों को अधिक लाभ होता है, वहीं लोगों को बेमौसमी हरी ताज़ा सब्जियां खाने को मिल जाती है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेमयुक्त संरचना होती है। यह कम सघनता वाले पॉलीथीन अथवा पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढकी होती है। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है। फवारा या ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके उसे मौसम के अनुकूल बना दिया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दा गिरा दिया जाता है।

0: इससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार किसान बेमौसमी सब्जियों व फूलों की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित किया जाता है ताकि वांछित सब्जी फसलों को वर्ष भर उत्पादन लिया जा सके। नियंत्रित जलवायु और मृदा परिस्थिति से पॉली हाउस में उगाई गई सब्जी एवं फूलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। पॉली हाउस बनाने के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर जमीन चाहिए और 2000 वर्ग मीटर तक पॉली हाउस बनाने के लिए जिला उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को कुल लागत का 50% तक का अनुदान सरकार देती है। वहीं नेट हाउस के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, इसके लिए भी 50% तक अनुदान सरकार देती है। किसान पहले से पॉली हाउस बनाकर खेती कर रहे हैं और वह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उनकी मरम्मत के लिए 75% अनुदान दिए जाते हैं। पॉली हाउस व नेट हाउस पर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी किसानों के खेतों में मानक के अनुसार उसे तैयार कर किसानों को उपलब्ध करा देती है। पॉली हाउस बनाने पर 935 रुपये वर्ग मीटर का खर्च आता है, वहीं नेट हाउस के लिए 710 रुपये वर्ग मीटर खर्च आता है। खुले खेत के मुकाबले पॉली हाउस में उत्पादन 3 से 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसमी फूलगोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। इसके अलावा फूलों की भी बेमौसमी खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ता है, लेकिन बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। इनमें कीटों व रोगों को नियंत्रित आसानी से 100% किया जा सकता है। सब्जियों व फूलों की गुणवत्ता बनी रहती है तथा बाजार में अधिक भाव मिलता है। छोटी जोत वाले किसानों के लिए पॉली हाउस अधिक फायदेमंद है, अतः किसानों को इसे ज़रूर अपनाना चाहिए और इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और आज की जानकारी बस यहीं तक।
1: पॉली हाउस में खीरे की व्यावसायिक खेती, इस विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में सुनीता अग्रवाल को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है तुलसीदास रचित रामचरितमानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 174।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित सृजामचरित मानस कांड। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चिंतन, बाल श्रम से छिन्ता बचपन। संकलन व वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी जिसको हमने वश में किया है। यह गीत हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ज़रा गौर करें उस बचपन की ओर जिनके नन्हे हाथों में कचरे की थैली होती है, झाड़ू होता है, कटोरा होता है। कहीं ट्रेन में भीख मांगते झाड़ू लगाते बच्चे मिल जाते हैं, तो कहीं ढाबों घरों में काम करते गाली गलौज डांट मार सहते बच्चे, तो कहीं कचरों में भविष्य तलाशते भोजन की जगह नशे का सेवन करते लड़ते झगड़ते चोरी करते बच्चे। ऐसा बचपन जब बड़ा होगा तो क्या वह एक स्वस्थ मजबूत नागरिक होगा, एक अनुशासित नागरिक होगा? और जब ऐसा बचपन होगा तो फिर देश का कैसा भविष्य होगा? यह विचारणीय बिंदु है, चिंतन का विषय है। बच्चे तो कच्चे खड़े की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार मिलेगा वैसे ही वो बन जाते हैं, इसलिए बचपन में ही उन्हें तराशने की आवश्यकता है। कुंठित दबा कुचला बालमन विद्रोही हो जाता है और ऐसे बच्चे बड़े होकर अपराध जगत का हिस्सा बन जाते हैं। यूं तो बाल श्रमिकों को लेकर कई कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे उपेक्षित गरीब बच्चों को सुरक्षित बचपन मिल सके। बावजूद इसके विश्व भर में बाल श्रमिकों की बहुत संख्या है। हमारे देश में तो स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। हमारे यहाँ बाल कानून हैं, बाल संरक्षण गृह हैं, पढ़ाई लिखाई रहने की व्यवस्थाएं भी हैं, गरीब पिछड़े दबे कुंठित अनाथ बच्चों के लिए काफ़ी फंड की भी व्यवस्था है, पर बच्चों की स्थिति में वह सुधार नहीं हो पा रहा है जिसकी आवश्यकता है। ऐसे नौनिहालों की किस्मत उनकी मुट्ठी में नहीं बल्कि औरों की मुट्ठी में कैद है। उन्हें उन मुट्ठी से मुक्त कराना होगा, उनके बचपन को उड़ान भरने देने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ना होगा, उन्मुक्त छोड़ना होगा, जिससे वो पढ़ें लिखें और शिक्षित नागरिक बन सकें, एक सुखद भविष्य की तलाश कर सकें। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें देखकर मन द्रवित होता है, लेकिन क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं? नहीं करते। यदि हम सब मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ें, बच्चों के भविष्य को संवारें, उस दिशा में काम करें, तो हम अपने देश के भविष्य को संवार सकते हैं। इन बच्चों को एक ऐसा नागरिक बना सकते हैं जो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सके, क्योंकि ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य होंगे। उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, और इस उम्र में जब वो खेलने कूदने की ज़रूरत होती है, पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो श्रम करते हुए मिल जाते हैं, और यह बहुत ही दुखद है। बाल श्रम निषेध दिवस इसीलिए मनाया जाता है जिससे लोगों के बीच जागरूकता हो और बच्चों का बचपन हम ना छीने, उन्हें हम मुख्य धारा में लेकर जाएं, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारा देश वाकई में वह राष्ट्र होगा जहां भविष्य उज्जवल होगा। तो आइए इस दिशा में मिलकर हम कार्य करें, अपने नौनिहालों का बचपन संवारें, उन्हें हाथ में खिताब दें, कलम दें, जिससे उनका भविष्य सुधर सके। उनके हाथ से झाड़ू कटोरे नशे इन सब से उन्हें हम दूर करें। तो आइए बच्चों का बचपन सुधारें।

चिंतन कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर को।

0: वंदना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को। अब समय हो चुका है गांधी कथा का, आइए सुनते हैं गांधी कथा। संकलन एवं वाचन स्वर है अनुराधा सिंह का।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां, आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियाँ हर एक गाँव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियाँ शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गाँव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गाँव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से
नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकुलन एवं वाचन स्वर था अनुराधा सिंह का। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा रांची से ली गई भेंट वार्ता। विषय है अकेलेपन से बचे। भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि लोग अकेलापन का शिकार हो रहे हैं। लोग अकेला रहना चाहते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं? क्यों लोगों से मिलना जुलना हम पसंद नहीं करते हैं? यदि हम लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, दोस्त बनाएंगे, परिवार के साथ अच्छे समय बिताएंगे तो हम खुश रह सकते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि आप अकेले क्यों हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार।

0: मुंडा जी, डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। आजकल अकेलापन लोगों को क्यों घेर रहा है, क्या कारण मानते हैं आप?
1: अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम में से हर कोई

0: तरफ जाता है। अकेलापन अब एक आदत के तौर पे लोगों में आता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। पहला कारण संवादहीनता। लोग अब एक दूसरे के साथ उस प्रकार से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। संवाद करने के जगह पे लोगों के हाथों में अब बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, चाहे मोबाइल आ गया है, चाहे लैपटॉप आ गया, चाहे OTT आ गया। लोग अपने आप को एंटरटेन करना अपने तरीके से एकांत में सीख रहे हैं, बजाय इसके कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करके जिए, लोग अकेलापन का चाह ज़्यादा रख रहे हैं। तो एक तो ये है। तीसरा कैटेगरी इस तरह का हो रहा है कि लोग जो परेशान है, जो ज़्यादा तनाव में है, वो अब क्या हो रहा है, उनके अंदर एक किस्म का हीन भावना भी आ रही है और लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ रही है। तो ऐसे लोग भी हैं जो एकांत को जो है वो मजबूरी में ले रहे हैं। तो उनकी मानसिक अवस्था इस प्रकार से हो जाती है कि वो एकांत में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक तबका इस तरह के भी लोगों का होता है। ज़्यादातर आज के युग में जिस तरह का जीवन शैली हम लोगों का बन गया है, उसमें अकेलेपन के लिए बहुत सारे अवसर बने हुए हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर उन्हीं अवसरों पर रह लेते हैं। संवाद स्थापित करने का अवसर, सामाजिक होने का अवसर कम से कम होता जा रहा है, तो लोग उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो लेकिन इन अवसरों को पैदा करने की ज़रूरत है, इन अवसरों को बनाने की ज़रूरत है अपने जीवन में, जो कि लोग शायद नहीं कर रहे हैं।
1: कोई व्यक्ति किसी से संवाद स्थापित भी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कटाक्ष होता है।
0: हाँ, दो बातें हो रही हैं। एक तो संवादहीनता है कि लोग एक दूसरे से संवाद ही नहीं करें। एक घर में ही पूरा परिवार, कई बार ऐसा होता है पूरे दिन में शायद मुश्किल से कुछ पल के लिए ही एक दूसरे से बात किया हो, जबकि वो लोग सुबह से शाम तक एक साथ एक घर में हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थितियां भी हैं। दूसरा है संवाद की कमी तो है, दूसरा है अगर संवाद हो भी रहा है तो वो बहुत ही त्रुटिपूर्वक हो रहा है। उसमें बहुत सारे मतलब कटाक्ष, जैसे आपने कहा, जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे की कमियां को बता रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब आने लगती है तो लोगों को लगता है इससे अच्छा तो है कि हम बात ही ना करें। तो वो स्थिति भी आती है कि लोग बात करने से कतराते हैं, बात करने का अवसर बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो एक संवादहीनता और साथ में ऐसी स्थिति का आ जाना जहाँ की एक हेल्दी डायलॉग्स आपस में लोग नहीं स्थापित कर सकते हैं, सबके साथ होते हुए भी व्यक्ति अकेला ही होता है।
1: इसका दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
0: शारीरिक स्थिति ये होती है कि ज़्यादातर लोग अकेलेपन में या तो बैठे हुए अवस्था में रहेंगे या लेटे हुए अवस्था में रहेंगे। अगर हम बोले फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो अधिकतर फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो सामाजिक दायरे पे ही होते हैं। चाहे हमें किसी के घर जाना है या कोई हमारे घर आ रहा था उनके लिए तैयारी करना है, ये एक सामाजिक दायरे में हम कुछ गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन अकेलेपन में कोई भी किस्म का फिजिकल एक्टिविटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो शारीरिक तौर पे व्यक्ति जो है एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक्शन रहित हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा चीज होता है कि जब व्यक्ति अकेलेपन में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्षमता जो है संवाद स्थापित करने की क्षमता जो होती है, एक जो हम सोशल स्किल बोलते हैं, आपके अंदर वो स्किल, वो क्षमता जिससे कि आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। तो लोगों के अंदर में एक कमी सी आने लगती है, लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। क्योंकि सामाजिक स्तर पर जब हम जितना अधिक इस तरह का व्यवहार करेंगे हम उतने और एक तरह से मजबूत होते जाते हैं इन क्षेत्रों में, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती है, सामाजिक तौर पे ये गतिविधियां नहीं हो रही है, तो एक इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सोचने समझने वाली बात भी, एक बौद्धिक स्तर पे जो हमारा विकास होता है, हम दूसरों के विचारों को

0: आत्मसात करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। कई बार दूसरों का जो एक मत होता है उसको ग्रहण करने में आप बहुत कठिनाई होती है। जब लोग सामाजिक होते हैं तो लोग दूसरों को मत से अगर वो सहमत नहीं भी है तब भी वो आगे बढ़ना जानते हैं, लेकिन जब संवादहीनता वाली बात होती है तो ऐसा होता है कि मेरे मत से कोई दूसरा व्यक्ति उसको सहमति नहीं दे रहा है तो वहाँ पर एक टकराव की स्थिति आ जाती है। तो ज़्यादातर अकेलापन एक टकराव वाली स्थिति भी पैदा करता है जब भी इससे लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी होता है जो धीरे धीरे अकेला रहते रहते रहते वो एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ उसका जीवन पूरी तरह से समाज के बिना एक जीवन की आप कल्पना किस तरह से कर सकते हैं, तो समाज से जब वो कट जाता है तो एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो जाती है।
1: कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो घुले मिले, लोगों को सहयोग करें, तो कैसे इन सब चीज़ों से हम बाहर निकले?
0: जी, अकेलापन का, जैसे मैं अभी आपने प्रभाव पूछा था, अकेलापन का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पे होता है, पारिवारिक स्तर पर होता है, और वृहत तौर पे कहे तो सामाजिक, समाज के स्तर पे भी होता है। तो अब बचाव के तरीके भी इसी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में सही कुछ ऐसा समय ज़रूर निकाले जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ और परिवार के साथ संवाद स्थापित करे, बातचीत करे, और बातचीत का विषय कुछ भी हो सकता है आपकी सुविधा के अनुसार। तो बातचीत करना शुरू कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ में। अभी आप स्थिति देख लीजिए, पहले जब मोबाइल और इन सब का युग नहीं था तो स्टेशन में या बस स्टैंड में स्थिति
2: अकेलेपन से बचाव विषय पर आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है समाचारों का, आइए जोड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासिपरिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिक नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता

0: वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the 2 northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights

अब से बस कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार हैं धर्मो नायक और इनके साथी। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय होगा 7:45। कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। सुबह के 8 बजे हम चलेंगे दिल्ली के अंदर जुड़ेंगे, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार। 10:05 पर हिंदी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे। दिन के 12 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे यादों की महफिल। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सुरीला सफर। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से हम जुड़ेंगे अंग्रेजी और हिंदी समाचारों के लिए। 2:30 बजे मुंबई केंद्र से पुनः जारी होंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।

5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम विवरण और 5:35 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा होगी बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर और गर्मी के मौसम में बरतें सावधानियां। सुप्रिया रंजन की वार्ता होगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। 6:00 आप सुनेंगे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे। 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम एक रंग। 7:45 पर रोजगार से जुड़ी बातें होगी। उड़ान कार्यक्रम के तहत संकलन एवं वाचन स्वर होगा मीनाक्षी कर्ण का। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:10 पर रांची केंद्र से रिले होगा वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम कड़ी संख्या 12। 8:45 पर हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है माटी की सौंधी खुशबू लिए चंद लोकगीतों के कार्यक्रम का। कार्यक्रम है पलाश, कलाकार हैं धर्मो नायक और इनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आज के कलाकार थे धर्मू नायक और इनके साथी। आप इनसे सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। समय हो चुका है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आइए स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत सुनते हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह को।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।

0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें

0: सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बैठ भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह, हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से

0: संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signed historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। संभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को मात्र 25 मीटर की दूरी से सटीक प्रहार कर उन्होंने ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से सद्दाम हुसैन खासा उत्साहित।
1: सीओ साहब से सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे। 2 दिन की लड़ाई चली और उसको मार गिराया गया।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी AERO के रिक्त 147 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 13 और 14 जून को विशेष मैपिंग शिविर लगेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को शिविरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य में आधार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए आधार सेवा केंद्र जल्द शुरू होंगे। ये केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में खुलेंगे। UIDA

0: आई ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद गया रेलखंड पर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कवच तकनीक से लैस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे द्वारा किया गया यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। धनबाद रेल मंडल DRM अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक के लागू होने से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने की स्थिति में ब्रेक अपने आप लग जाएंगे।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें अब हम लोग चला रहे हैं बहुत ही रफ्तार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। किसी भी तरह से अगर मानवीय चूक होती है तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतवर्ष में डेवलप हुई है। RTSO और टीम ने इसका डिजाइन बनाया है।
0: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चाईबासा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधियों के बढ़ते खतरे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के खनिज बकाए के त्वरित भुगतान की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो ट्रेन, पारा शिक्षकों के मानदेय और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। इस पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हक की आवाज बुलंद की है, केंद्र बकाया तुरंत जारी करे।
3: तो नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के जो बकाया है वो बकाया दे दिया जाए क्योंकि राज्य की जो राजकोषीय जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है। तो एक मेट्रो रेल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए।
0: पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक छोड़ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और आंतरिक सुरक्षा सुधारने पर ध्यान दे।
4: आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो DMFT स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से RIMS 2 को या जगह जगह दोहराने की है?
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा के यमुना नगर में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली T20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया ए टीम में निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली को जगह मिली है, जबकि वागीश त्रिपाठी इंडिया बी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी खिलाड़ी रांची से रवाना हो चुके हैं। जेएससीए स्टेडियम में खेली जा रही झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड को सिर्फ खनिज राज्य ही नहीं नॉलेज हब बनाना है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेट प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों के कार्य की कीमत आंकी। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम 29 जून को सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। पेश है पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज ये करते हैं सुहाग फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की। शब्द हैं आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। केवल ज्ञान की ज्योति से ही मानव मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, केवल ज्ञान की ज्योति से ही मानव मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। यह सुविचार है राजा राम मोहन राय के। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी 50% रहेगी। कल यानी कि 13 जून को अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना जताई गई है। आज थोड़ी सी आंधी भी चल सकती है, गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं पलामू के कुछ हिस्सों में। और अब आपको लेकर चलते हैं गीत संगीत की ओर।

इस प्यारे से गीत के बाद आइए समाचार सुर्खियों पर डालते हैं कि निगाह। सबसे पहली खबर खेल की दुनिया से, 10 विकेट से धनबाद डायमंड्स को हराया छोटा नागपुर रॉयल्स की एकतरफा जीत, विराट बने प्लेयर मैन ऑफ द मैच। बारिश से प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम से फैसला, 4.2 ओवर में ही हासिल किया 65 रन का लक्ष्य। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में छोटा नागपुर रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में रॉयल्स ने धनबाद डायमंड्स को 10 विकेट से हराकर दमदार जीत हासिल की। बारिश से प्रभावित इस मैच का परिणाम DLS नियम के आधार पर तय हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत खराब रही। ओपनर विकास कुमार विशाल पहले ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, जबकि हिमांशु कुमार भी केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आर्यमन सेन और आदित्य सिंह ने पारी को संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। आर्यमन सेन ने 20 गेंदों में नाबाद 31 रन और आदित्य सिंह ने 16 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए। बारिश के कारण खेल रोके जाने तक टीम का स्कोर 7 ओवर में 63 था। छोटा नागपुर रॉयल्स की ओर से ऋत्विक एम पाठक और सुप्रिय चक्रवर्ती ने एक एक विकेट हासिल किया। बारिश के बाद DLS नियम के तहत रॉयल्स को 5 ओवर में 65 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। खनिज संपदा का लाभ राज्य के लोगों को मिले, यह कहना है CM हेमंत सोरेन का। नीति आयोग की बैठक में उद्योग, रोजगार और मानव संसाधन विकास पर जोर। 11वीं शासी परिषद की बैठक, CM ने केंद्र से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के समग्र विकास की कार्य योजना रखी। क्रिटिकल मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और खेल अवसंरचना के विस्तार का रखा खाका। नीति आयोग की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के समग्र विकास पर बल दिया, उसकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाए। उन्होंने झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखने की परंपरा से अलग विकास की यात्रा में साझेदार बनाने पर बल दिया। अपनी बातों को विस्तार से रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, उससे जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो। प्री मानसून बारिश से बदला मौसम, गर्मी से राहत, आज और कल भी जोरदार बारिश के आसार। आकाशीय बिजली गिरने से कई जगह हो रही हैं दुर्घटनाएं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आने वाले 3-4 दिनों तक रांची सहित विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 12 और 13 जून को बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जून के बाद भी राज्य भर में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसे लेकर विभाग की ओर से 16 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद में सबसे अधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से मौसम साफ रहा और प्रचंड गर्मी महसूस हुई, लेकिन दोपहर बाद काले और घने बादल छाने लगे और मूसलाधार बारिश हुई, इससे लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली। साथ ही तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने 13 से 15 जून के बीच मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 43.2 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश धनबाद में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रांची में 10.2 मिलीलीटर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। 2029 तक राज्य होगा टीबी मुक्त, मंत्री इरफान अंसारी का कहना है। नेशनल टास्क फोर्स की 2 दिनी बैठक में देश भर के विशेषज्ञ हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि टीबी राज्य ही नहीं देश के लिए चिंता का विषय है। टीबी उन्मूलन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए। जब तक समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी नहीं बनेगा, तब तक इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना संभव नहीं होगा। उन्होंने राज्य के सभी सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लें और इस अभियान को तेजी से चलाएं और इसका नेतृत्व भी करें। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने साल 2029 तक टीबी मुक्त झारखंड का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। टीबी मुक्त अभियान के तहत अब तक
1.36 लाख से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को एक होटल में राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रम NDEP में मेडिकल कॉलेज की भागीदारी को लेकर आयोजित नेशनल टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। हैदरनगर के परता में पीएम आवास के 323 लाभुकों का ग्राम सभा में हुआ अनुमोदन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस वर्ष 2024 की अस्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन को लेकर हैदरनगर प्रखंड के परता पंचायत सचिवालय में ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में सत्यापन के बाद 323 योग्य लाभुकों की सूची का अनुमोदन किया गया। कोयल नदी पर पुल बनने से बिहार झारखंड संपर्क होगा आसान। गवर्नर रोड में पुल निर्माण की मांग तेज। लोगों को भी सीधा मिलेगा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का आसान रास्ता। कादल कुर्मी दगवार मुख्य पथ गवर्नर रोड में कोयल नदी पर पुल निर्माण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण से बिहार झारखंड के बीच संपर्क आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार भीम बराज पुल से भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित है। ऐसे में बड़े वाहनों को काफी लंबा रास्ता तय करना, उटारी या पंसा के पास बने पुल से आवागमन करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि गवर्नर रोड में पुल निर्माण होने से दूरी कम होगी और समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। बताया जाता है कि साल 1954 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल R.R. दिवाकर ने आवागमन को लेकर इस सड़क का निर्माण कराया था, तभी से इसे गवर्नर रोड के नाम से जाना जाता है। भू अभिलेख में भी इस सड़क का उल्लेख दर्ज है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री L. मुरुगन, पलामू सांसद V.D. राम तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। वहीं विश्रामपुर विधायक के द्वारा विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जनगणना के प्रथम चरण की सफलता पर जनगणना कर्मियों ने मनाया जश्न। निर्धारित समय से पहले हाउस लिस्टिंग कार्य पूरा होने पर साझा किए अनुभव। सदर मेहंदीनगर प्रखंड अंतर्गत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB 21 से 27 तक भारत की जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 5 जून 2026 को सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में रजवाड़ी मध्य विद्यालय में जनगणना पदाधिकारियों की एक संक्षिप्त बैठक आयोजित कर खुशी व्यक्त की गई। बैठक के दौरान जनगणना पदाधिकारियों ने मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य के दौरान मिले अपने कट्टे मुट्ठे अनुभवों को साझा किया। सभी कर्मियों ने कहा कि आपसी सहयोग, समन्वय, सम्मान और सतत कार्य रणनीति के कारण निर्धारित समय से पहले कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका है। तुलसी मानस मंदिर निर्माण कार्य तेजी से जारी, भक्तों से सहयोग की अपील। तुलसी मानस मंदिर साहित्य समाज चौक ब्राह्मण विद्यालय के सामने निर्माणाधीन इस मंदिर का कार्य तेजी से जारी है। मंदिर समिति के सचिव मनीष भिवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर निर्माण का कार्य विभिन्न राज्यों के अनुभवी कारीगरों के द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर का गुंबद उत्तर प्रदेश के कारीगर तैयार कर रहे हैं और इसमें सभी लोगों से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की भी गुजारिश की गई। इन खबरों के साथ ही अब समाचार सुर्खियों से हम हटते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक

0: चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये पलटते हैं इतिहास के पन्ने। आज है 12 जून 1991 में बोरिस यल्सिन रूस के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस बाल श्रम की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और इसे समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति आज ही की तारीख को बने थे। 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी, तारीख थी 12 जून। 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वीं ओशियन सिने फैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था। 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था, आज की तारीख को। 1935 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा का जन्म हुआ था और 1951 में जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म आज ही की तारीख को हुआ था। इतिहास से जुड़ी इन बातों के बाद आपको कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनवाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामो, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन सुरेश केलाल का। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 10 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती

भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैसल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं UDC पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम लोग तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर नहीं होते थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है,
1: जी जी
0: पसीना आता है,
1: जी
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है ना कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं, हमारे ग्रामीण खेल।
1: नहीं ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूतरंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है किराना, वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाइट ऊंची थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है,
0: तो
1: बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था जब जॉब लग गया था, मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने का छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था, पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना
1: मैडम
0: घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सप...

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे, आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या
1: हेलो,
0: बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी,
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ और घर पे रहती हूँ और अभी भारतीय के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ। मैं आपका झमकार सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मनचाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्टकार्ड में अपना नाम पता भेज रही हैं, पसंद का गाना?
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: बहुत लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना? चलिए, अपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। युद्ध भारती, मैं
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना,
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से? अच्छा,
1: सोलापुर में बार्शी से।
0: स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम, तुम
0: अरे वाह, क्या बात,
1: कैसे?
0: हम भी अच्छे
1: युद्ध
0: हैं।
1: भारती के बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई विचार तो करे ना, तुम कार्यक्रम सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक,
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। जैसे हेलो फरमाइश, गीत गा पक्ष, बड़े
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है। नहीं
0: वो आपका मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: दिल दिल का वो प्रिया प्रिया क्यों भुला गया, ये गीत सुनना है मुझे मैडम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये? फरमाइश,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी मैम। हम धेमाजी असम से बिमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: विमल जी,
1: जी
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैम हम ठीक है। मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं? लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम,
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए ऐसे चलता है मैम। जी
0: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो।
1: मैम जी
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है सामान
0: हाँ, और विविध भारती के लिए
1: मैम।
0: कब समय निकालते हो?
1: जी मैम भीड़ भाड़ तो सुनते रहता हूँ, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम,
0: कैसा महसूस कर
1: पहला
0: रहे
1: तो
0: हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम। बिल्कुल,
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी। कैसे हैं आप, बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा, तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है, बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए, किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और
0: हाँ,
1: खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम।
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए, आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा।

0: लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है। जी
1: चाय का खेती भी करते हैं?
0: जी असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम
1: आहा,
0: लोग।
1: बिल्कुल आसाम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियां?
0: जी।
1: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
0: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी, एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
0: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है, और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने ऐसा लगता है।
1: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
0: बनाती भी है और बजाती भी है।
1: खेतों से मिलती
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: आपको
0: हाँ
1: ये लकड़ी?
0: बम्बू से बनाता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी
0: जी
1: है। तो बताइए,
0: जी
1: चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का वो जो चांद नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: चांद

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है
1: जी
0: आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं?
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री। तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: थोड़ा हम

0: खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, ये दोनों
1: अरे
0: खेलना पसंद है मैं जरा।
1: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है? खो
0: खो खो।
1: खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो,
0: जी,
1: है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
0: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
1: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
0: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा, पढ़ाई की आपने,
0: पढ़ाई 12वीं तक की। बिल्कुल
1: अच्छी बात है। चलिए अभी
0: बिल्कुल।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
1: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: ये

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

ताजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी की बोल है, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चंदन दास की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे, कलाम था निदा फाजली का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: बहुत जल्द संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक अनमोल श्रृंखला। आएंगे इसमें जाने माने बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। तो सुनते रहिए विविध भारती संगीत सरिता। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

आप सुन रहे थे पीनाज मसानी की आवाज़ में यह गज़ल। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

सारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

लैला मजनू शेरी फरहा।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला

जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
2: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए

0: काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NETUG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation. General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization, IMO, Arsenio Dominguez, has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman, in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता, स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का

0: बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
0: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
3: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,003 किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीद कर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एक मुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती, साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें एचएलएल हेल्थकेयर ने अस्पताल निर्माण और उपकरण खरीद पर प्रस्तुति दी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएलएल को 7 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रॉमा सेंटरों के रूप में विकसित करने और कम क्षमता वाले अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से ही सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने दुमका में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
4: तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवानी जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है, क्योंकि पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है, मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
0: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
5: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई, तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजैक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की हुई है।
0: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक बढ़कर 23,382 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिक विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता, स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि पला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गम आज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिक, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या ये खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना। उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है, बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है, और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है, और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ताउम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो

मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूट कर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे

तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था, तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं, प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

औकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी

0: रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है। सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने

0: और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। एक रिपोर्ट।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ

0: उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी कराने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में मुलाकात कर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सारंडा क्षेत्र के पात्र निवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को 500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में अदालत ने उन्हें एक वर्ष के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशामुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
1: राज्य में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। नशा परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफी क्षति पहुंचाता है और खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस घर में नशा होता है वहां पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं।
0: और अब मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इस बार पहली बार 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी
1: जी,
0: जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम,
0: अच्छा
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: भैया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों के गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, वो खाकी जब कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात।
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा
0: मैं
1: मैं ना
0: ना
1: भूलूंगी।
0: भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी
1: हाँ
0: किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना हो या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के और उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का, चलिए
1: हाँ
0: आप ही
1: तुम
0: की
1: बिल तुम बिल।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण रह नहीं हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना? बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा
1: हाँ,
0: चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, साठी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन
1: हाँ
0: दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना अपना
1: यस,
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी
1: हाँ
0: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
1: हाँ
0: थे तो गर्मी की
1: हाँ
0: छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों
1: हाँ
0: में
1: यस,
0: बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते, तो पढ़ाई नहीं तो ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे। हाँ
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत,
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत
0: बहुत
1: कुछ।
0: अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए, आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मेरी
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
1: है।
0: इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी,
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी,
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी।
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी, ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप, आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: कम जो लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती
1: बना
0: हैं।
1: के ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के। जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं, तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में, करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली कोटपुतली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
0: बहुत अच्छी बात
1: इसलिए।
0: है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका? क्या
1: मेरा नाम सुनीता उइके। मैं
0: बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके
1: जी
0: आसपास
1: जी
0: कौन सा
1: जी
0: बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: हैं।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं, देवर
0: जी,
1: के एक है, एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा
0: अच्छा।
1: दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी, तो घर में बस अब ये कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ, बिल्कुल यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो

0: हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम। जी
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: साथियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228702888, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चपरासी टोला में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान राहुल कुमार शाह और विपिन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बैटरी संचालित कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रथम चरण में 6 ट्रैफिक जवानों को विशेष जैकेट प्रदान किए। SP ने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह जैकेट करीब 6 घंटे तक ठंडक प्रदान करती है और आगे सभी ट्रैफिक जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं, यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लो। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम

जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ, पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि

को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती हैं, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा ना जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप कर

0: करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी,
1: अच्छा ठीक है आप
0: किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं, देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना, नहीं जा रही, शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ते पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी

कहीं कुछ देर बैठा जाए। लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की गड़गड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए

देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।

अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी।

0: अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूं। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ देर रात छापेमारी कर 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त कराई। छतरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के दलांचल करई गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद और जादू टोना को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण पाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के गोतिया पक्ष के हैं और हत्या की साजिश में शामिल थे। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर देशी कट्टा के साथ स्टेटस लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी 19 वर्षीय अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 देशी हथियार बरामद किए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार महिला खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया कि 25वीं जिला फुटबॉल लीग 2026 का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से रात हो गई।

उनके हुस्न की शोखी बहारों में है, उनकी आवाज की खनक दिल में दस्तक देती सी जान पड़ती है। क्यों उनसे दिल लगा बैठे, ये फसाना इश्क का जमाने से क्या कहें, पास आके दूर जाने की ये सजा क्या कहें।

आरती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो, सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

यहाँ भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

बदलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा, दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तो राने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, कुछ ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम विवरण द्वारा घर आंगन महिलाओं का कार्यक्रम बाल श्रम में विद्युत विश्व दिवस गर्मी के मौसम में बढ़ते सावधानियां वार्ता महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान वार्ता कार्य सुप्रिया रंजन प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे पर आकाशवाणी रांची केंद्र से खेती बाड़ी ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम चर्चा में समन्वित मछली पालन पर बात की जाएगी साथ ही नवजात बच्चों की देखभाल वार्ता में गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की देखभाल कैसे करें वार्ताकार संध्या चंद्रा 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण सभा कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम चर्चा में स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ साथ ही आज का विचार में बकरी पालन से फायदे भेंटवार्ता में ओल की वैज्ञानिक खेती भेंटवार्ताकार हैं प्रमोद कुमार कृषि विशेषज्ञ भेंट करता है संतोष कुमार आज का मौसम आज का बाजार भाव इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे हमेशा की तरह शाम 6:55 पर रांची केंद्र से सुनेंगे 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल 7:15 में फिल्म संगीत का कार्यक्रम उड़ान हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से रोजगार से जुड़ी बातों का कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर उड़ान रात्रि 8 बजे चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम साथ ही 8:10 पर सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम कड़ी संख्या 12 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार 9:15 में उर्दू में समाचार 9:30 पर आज के फनकार सुनेंगे आकाशवाणी ये विविध भारती की प्रसारण सेवा से रात्रि 10 बजे

0: रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से 11 बजे रात्रि हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार 11:10 पर अपनी सभा का हम समापन करेंगे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन और इसकी शुरुआत करते हैं वार्ता के साथ। वार्ता में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, वार्ताकार हैं सुप्रिया रंजन।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अधिवक्ता सुप्रिया रंजन जिला पलामू सत्र न्यायालय डाल्टनगंज से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे वकील के रूप में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़ी कानूनी मामलों पर कार्य कर रही हूँ। आज आकाशवाणी दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम कानूनी जागरूकता जाने महिलाओं से संबंधित कानून में मैं आप सभी को आपके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी दूंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं, अपने अधिकारों को समझें, कानूनी सहायता का सही उपयोग करें और उसके अन्याय के विरुद्ध आत्मविश्वास के साथ आगे देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज मैं आप सभी के सामने महिलाओं से संबंधित कानूनी जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हमारा संविधान हर महिला को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी आज कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होने के कारण अन्याय और शोषण का शिकार बन जाती हैं। बहनों, महिलाएं समाज की आधारशिला हैं। एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में वे परिवार और समाज को मजबूत बनाती हैं। ऐसे में कानूनी जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून बने हुए हैं। अगर कोई महिला हिंसा का शिकार होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं और न्यायालय की शरण ले सकती हैं। एक समय था जब महिलाओं की आवाज़ घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज की नारी अब सिर्फ सहन नहीं करती है बल्कि अपने अधिकारों को पहचानती है और उनके लिए खड़ी रहती है। परंतु यह शक्ति तभी आती है जब हमें अपने कानूनों की जानकारी होती है। आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए अन्याय सहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहनों, मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप चुप रहेंगी तो न्याय कौन मांगेगा? सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कई सुरक्षा कानून बनाए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक ये कानून सिर्फ कागजों में बने रह जाएंगे। बहनों, हम सब मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, परिवार को जोड़कर रखती हैं, लेकिन कई बार हमारे समाज में हमारे साथ गलत होता रहता है। कभी घर में मारपीट, कभी दहेज की मांग, कभी गाली गलौज, कभी जमीन या संपत्ति में हिस्सा न देना, कभी बाहर किसी का छेड़ना या साइबर क्राइम द्वारा परेशान करना। याद रखिए, यह सब अपराध है और इसके खिलाफ हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान ने हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, शिक्षा और रोजगार का अधिकार। अगर किसी महिला को उसके घर में मारा पीटा जाए, तंग किया जाए, तो वो 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, 112 पुलिस नंबर या नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कानून कहता है दहेज मांगना अपराध है, घरेलू हिंसा अपराध है, किसी महिला को सड़क या खेत में छेड़ना अपराध है, मोबाइल पर धोखा देना अपराध है, मोबाइल पर किसी का वीडियो गलत तरीके से वायरल करना अपराध है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना। अर्थात मैं यह कहना चाहूंगी, जागरूक महिला ही सशक्त महिला है और सशक्त महिला ही परिवार और समाज को बदल सकती है। श्रोताओं, मैं आपको आज कानूनी तरीके को कैसे अपने जीवन में अमल लाएं और उसके क्या क्या तरीका है ये बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की। घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शारीरिक हिंसा नहीं है बल्कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, भावनात्मक अत्याचार और सामाजिक अपमान, इन सभी को अपराध की श्रेणी में ही माना जाता है। इस कानून के तहत महिला को पति या ससुराल से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। महिला को उसके घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, जिसे रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं। महिला और बच्चों के लिए खर्च के लिए प्रावधान है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। काउंसिलिंग और शेल्टर होम की भी सुविधा है।

यदि किसी महिला को घर में किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़े तो वह महिला हेल्पलाइन 181 में कॉल कर सकती हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहती हैं सूचना को गुप्त रखकर आपके काम को आगे बढ़ाया जाए तो वहाँ पे ये भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आपसे तुरंत संपर्क करते हैं, थाना में भी आप कॉल कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। दूसरा बड़ा कानून है दहेज निषेध अधिनियम। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक गंभीर अपराध है। अगर किसी महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाए, शादी टूटने की धमकी दी जाए तो वह कानून का मदद ले सकती है। इस कानून में कैद, भारी जुर्माना और दहेज की वस्तुओं का वापस मिलना सब शामिल होता है। महिला को यह जानना चाहिए कि दहेज मांगना शुरू से ही अपराध है, चाहे वह शादी में हो या शादी के बाद हो। 498A IPC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पति या ससुराल द्वारा क्रूरता के अंतर्गत इस सेक्शन में काम होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जिसमें महिला को मारपीट, दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए मजबूर करना इसके अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत आप FIR दर्ज करा सकती हैं। यह कठोर दंडनीय अपराध है जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पॉश एक्ट, ये 2013 में आया है। महिलाएं अक्सर गांव में या शहर में अपने घर की जीविका चलाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, दो चार पैसे कमाती हैं ताकि उनके घर को, उनके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। मगर जब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ही होने लगे, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें होने लगे, गंदे इशारे करने लगे वहां के अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी, इशारों भरी बातें करने लगे, उनके गंदी संदी फोटो भेजने लगे तो वहां का माहौल असुरक्षित हो जाता है। इन सभी की शिकायत के लिए महिला को शिकायत दर्ज करना चाहिए जो 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए और शिकायत मिलने पर संस्था को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होती है। इसके लिए हर कंपनी या समिति के लिए ICC एक आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है। आजकल महिलाएं जब काम करती हैं तो अगर उनकी प्रेगनेंसी की पीरियड है, अगर वो गर्भाधान की है या फिर उनका बच्चा होने वाला है तो उस टाइम भी उनको सही न्याय दिलाने के लिए या उनके कार्य व्यवस्था को आसानी करने के लिए उनको अधिकार सुनिश्चित करती है। इसमें हमारा ये कानून कहता है कि 26 सप्ताह का वेतन, अगर आप काम नहीं कर रही हैं तब भी आपको अवकाश का समय लेने का अधिकार है और उस समय आपको उसका पैसा भी मिलेगा। आपको चिकित्सकीय सहायता मिलेगी, नौकरी से नहीं निकालने की सुरक्षा मिलेगी और प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पर यह कानून लागू होता है। एक अधिकार है बेटी का संपत्ति में अधिकार। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त है, चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित। पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। पैतृक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है और अन्य पारिवारिक अधिकार भी उसे वैधानिक रूप से मिलते हैं। यह महिलाओं के समानता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात बेटा हो या बेटी, सभी को अपनी पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। हमारे कानून में हर जगह कोर्ट है और कोर्ट के अंदर एक डालसा DLS से मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है जो नेशनल लेवल पर नालसा का रूप ले लेती है। अगर किसी महिला के पास वकील करने की आर्थिक क्षमता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLS से उसे मुफ्त वकील उपलब्ध कराता है। जिला न्यायालय परिसर में ही डालसा का कार्यालय होता है। यहाँ पे जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपसे पैसे नहीं लिए जाएगा, ये निःशुल्क सहायता होता है और हर महिला को यह सहायता पाने का अधिकार है। आज के टाइम में साइबर अपराध जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज के टाइम में हर इंसान के पास फोन है और फोन से वो कई लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं मगर ये जान नहीं पाते हैं कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाह रहा है। आपके कुछ फोटोज लेगा, उसे नेट के थ्रू वायरल करेगा, उसको गंदे संदे मैसेज के साथ सेट करेगा और उसे वायरल करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे उससे पैसे की डिमांड करेंगे या फिर आप स्टॉक करेंगे। तो इस टाइप के साइबर अपराध के लिए महिलाएं साइबर सेल में जा सकती हैं। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और भी बहुत सारे कानून हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने अधिकारों की आप रक्षा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको बहुत ही लाभ मिला होगा और आपको कानूनी अधिकारों के बारे में बहुत ही स्पष्ट जानकारी मिली होगी। गांव घर में लोग अक्सर घर के चार दीवारी में ही रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम कानून का सहारा ले या कोर्ट कचहरी जाएंगे तो गांव के लोग क्या बोलेंगे। मगर आपको जागरूक होना है क्योंकि आप अपने बारे में खुद ही वो निर्णय ले सकती हैं कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अर्थात याद रखिए, कानून हर महिला की सुरक्षा

0: सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना है। यदि आपके आसपास कोई महिला किसी भी प्रकार के हिंसा, उत्पीड़न या शोषण का सामना कर रही हैं, तो उसे कानून का मदद लेना अवश्य सिखाएं। इसी संदेश के साथ मैं अधिवक्ता सुप्रिया रंजन बस आपसे दो लाइन और कहना चाहूँगी कि सशक्त महिला वह है जो अपने हक को जानती भी है और मांगती भी है। अर्थात एक सशक्त महिला न्याय की सबसे बड़ी वकील होती है। और कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। और मैं अंत में कहना चाहूँगी, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ है औरतों के दम से हैं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, वार्ता का थी सुप्रिया रंजन। और अब आइए सुनते हैं एक मधुर संगीत।

और श्रोता बहनों, गर्मी, बेशुमार गर्मी है, तपिश है, और गर्मी हमें ये भी सिखाती है कि धैर्य रखना। ये इतनी गर्मी के बाद, तपिश के बाद जब बारिश होनी शुरू होगी तो हम उससे ठंडापन तो महसूस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी है। गर्मी के मौसम में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां क्या? बाहर निकलें तो कपड़े का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जो पहन रहे हैं कॉटन के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में पसीने सोखने की क्षमता होती है, सिंथेटिक नहीं, उसे स्किन में भी आपके प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में छतरी रखना ज़रूर भूलें। जब कुछ दूर पैदल जाना हो चश्मा ज़रूर लगाएं, यानी कि चप्पल भी पहने तो सोच समझ के पहने, वैसे आरामदेह जो आप अच्छे से चल सकें, तेज़ गति से चल सकें, लेकिन वो चप्पल, आपकी चप्पल जूते आपके पैरों को सुरक्षित रखें, न कि फिसलन वाले। अगर तेज़ तेज़ में चल रहे हैं गर्मी में तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी भागें। सोच समझ के कपड़े का इस्तेमाल करें। साथ ही खान पान में सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि तरल पदार्थ, वैसे में गाजर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। अभी देखिए बहनों, बारिश नहीं हुई है लेकिन बच्चों को और सबको फलों का राजा आम होता है। ऐसे में बारिश के बाद एक मीठापन अलग होती है, क्योंकि आम में भी बहुत गर्मी होती है, बच्चों को पेट भी ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में क्या करें, बारिश हो नहीं है लेकिन बाज़ार में तो आम आ चुके हैं, और आम भला किसे नहीं भाए, आम को देख कर जी ललचाए। आम लेकर आएँ घर में, ठंडे पानी में कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी रख सकते हैं, और जब ये पूरा पानी, वो पानी आपका जैसे गर्माहट ले ले, पानी को हटा दें, फिर उसको फ्रिज में रख सकते हैं या फिर पानी में रख के तब बच्चों को दें या आप खाएं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी सावधानियां जब हम रखेंगे तो गर्मी का मौसम क्या, हर मौसम हमारे लिए सुहाना होगा। गर्मी है तो गर्मी होगी ही, इसमें हर रोज़ कहना बहुत गर्मी है, हाँ एक एक दिन बढ़ के ये गर्मी रोज़ हो रही है, लेकिन मानसून भी अब नज़दीक है हमारे, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। 12 देखिए ये, क्योंकि 12 से 13, 14, 15, 18 तक तो मानसून रहता ही है, तो हमें भी उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार, लेकिन उसके पहले जो इतनी गर्मी हो रही है इसके लिए यही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ना खाएं, पेट को खाली ना रखें, पेट को बहुत भरा भी ना रखें। भरा रखने से अगर आप कहीं बाहर निकलते हो तो जी में एक मिचलन सी होती है, और पानी का सेवन पूरा करें। सत्तू अगर सुबह अभी के समय में सत्तू घोल के पी लेते हैं आप कहीं जाने के पहले, वो भी सही होता है। उससे क्या होता है, प्यास बहुत लगती है तो लगातार आप पानी पी सकते हैं। इन छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसे अगर आप अपने साथ रखेंगे तो गर्मी के मौसम में हमें निजात मिलेगी। साथ ही सुबह के नाश्ते में कोशिश करें, दही, अभी दही का सेवन है, मूँग है, चना है, सुबह के समय ज़रूर लिया करें। एक समय तो सैलाड जो है वो आपके खाने में बिल्कुल शामिल होना चाहिए, खाने के 10-15 मिनट पहले या पहले सलाद का सेवन ज़रूर करें, और हो सके तो अगर जिनकी आदत चाय पीने की हो तो पीते ही हैं उनको, लेकिन कम से कम चाय का उपयोग करें। ज़्यादातर नींबू पानी, सिकंजी, इन सारी चीज़ों को अगर आप लेंगे तो गर्मी से आपको राहत मिलेगी, यानी कि शरीर को वो ताजगी मिलेगी। शरीर को ताजगी मिलती है सिकंजी से, नींबू पानी से, आप सौंफ के पानी से, इन सारे चीज़ों को आप ताल मिश्री जो है, ताल मिश्री को अगर आप थोड़ा सा पानी में पहले डाल के मिला लेते हैं, कहीं जाने से पहले पी लें या घर में आएँ तो उसको रख कर जाएँ, और जब घर में आएँ तो आने के थोड़ी देर बाद ताल मिश्री वाला पानी पी लें, सौंफ का पानी पी लें। ये छोटी छोटी जो आदतें हमारी हमको हमें हर मौसम के करीब लागी लाती है, और साथ ही हमें उसमें आराम भी मिलता है। तो और ख़ास करके बच्चों का ख्याल तो बहुत रखना है, गर्मी का मौसम है, छुट्टियां चल रही है, बच्चों को खेलने की आदत है, खेलने भी देना चाहिए, लेकिन अभी बहुत 7 बजे तक जैसे कि धूप और लहर है, तो ऐसे में कोशिश करें कि बच्चे देर से ही घर निकले, खेले थोड़ी देर, लेकिन लहर में और धूप में बिल्कुल बच्चे को खेलने ना दें, इससे बिल्कुल उल्टा असर उनके शरीर पर पड़ेगा। और अभी तुरंत स्कूल भी खुलने वाले हैं, गर्मी को देखते हुए स्कूल का भी खुलना पहले से निर्धारित जो समय था उससे आगे बढ़ गया है, क्योंकि गर्मी है, इतने गर्मी में बच्चे अगर स्कूल में आएंगे तो बीमार पड़ेंगे, लेकिन बच्चे घर में भी सुरक्षित रहें इसके लिए उनके खान पान से लेके हर चीज़ का ख्याल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है।

तो आइए इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम पालन करते हैं और गर्मी के मौसम का आनंद लेते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हम सभी गर्मी के मौसम में, ये मौसम किसी को छोड़ता नहीं है, जब अपने साथ लपेटे में लेता है तो सबको ले लेता है। इसीलिए कोशिश करें कि ताज़े खाने का सेवन करें, साग सब्जियों का सेवन अच्छी तरह से करें, मसालेदार सब्जियां ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और गर्मी के मौसम में गर्मी का भी लुत्फ उठाएं। चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम घर आंगन से हमें दीजिए इजाज़त। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: छह बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। सीएससीपी के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और रबी मौसम में तेलहन फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15 से 24 जून तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंद झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी, ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
4: नमस्कार, स्वागत है किसान भाई बंधुओं आपका खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। बंधुओं, खेतीबाड़ी एक ऐसा कार्य है जो वर्ष भर चलता है। जी हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। घर में कई तरह के काम होते हैं और यदि पशुधन है हमारे पास तो फिर उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ जाती है। जी हाँ, पशुपालन में जो नवजात बछड़े होते हैं, बछियाँ होती हैं, उनकी उचित देखभाल बहुत ही आवश्यक होती है। बछड़ा किसी भी डेयरी फॉर्म का भविष्य होता है और बछिया आने वाले समय की भविष्य होती है। जी हाँ, जन्म के बाद शुरुआती कुछ सप्ताह बछड़े के जीवन के सबसे संवेदनशील दिन होते हैं। जी हाँ बंधु, और इस दौरान यदि सही देखभाल की जाए, पोषण और स्वास्थ्य

का प्रबंधन उचित तरीके से किया जाए तो फिर बछड़े बछिया ये स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं और फिर ये एक अच्छे पशु बनते हैं। और यदि लापरवाही की गई तो फिर ये रोग, कुपोषण और मृत्यु की संभावना के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, नवजात बछड़े का क्या महत्व है आइए जानते हैं। जो नवजात बछड़े होते हैं वे हमारे भविष्य हैं। जी, बछड़े हों बछिया हों तो ये पशुपालक के लिए काफ़ी मायने रखते हैं और उनके बच्चों की तरह होते हैं और एक पशुपालक बच्चों की तरह ही इनकी देखभाल भी करता है। स्वस्थ बछड़े या बछिया आगे चलकर उच्च उत्पादक गाय या फिर बैल भैंस बनते हैं। इसलिए जन्म से ही उनकी वैज्ञानिक तरीके से यदि देखभाल की जाए तो उनकी उचित देखभाल की जा सकती है। अब बातें आती हैं कि जन्म के तुरंत बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, सबसे पहले श्वसन मार्ग की सफाई करना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद नवजात के नाक और मुंह में मौजूद श्लेष्मा यानी कि म्यूकस को साफ करना चाहिए। जो ये श्लेष्मा होता है, म्यूकस कहलाता है, उसकी सफाई करना चाहिए जिससे वह आसानी से सांस ले सके। यदि नवजात बछड़े या बछिया को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है तो उसके शरीर को सूखे कपड़े से रगड़कर श्वसन क्रिया को सक्रिय किया जा सकता है। जी हाँ, जन्म के बाद बछड़े के शरीर को साफ और सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं, बछड़े हैं बछिया है, उनके शरीर को साफ और सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और ठंड से बचाव होता है। सर्दियों में तो यह विशेष रूप से आवश्यक है जी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में उन्हें ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अब बारी आती है नाभि के देखभाल की। जी हाँ, जो नाल है उसकी देखभाल कैसे की जाए। नाल को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई छोड़कर काटना चाहिए और उस पर 7% आयोडीन या टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बंधुओं, जो नवजात बछड़े हैं बछिया हैं उनके लिए खीस अमृत के समान होता है और यह प्रसव के बाद निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रोग प्रतिरोधक तत्व ये भरपूर मात्रा में होते हैं। जन्म के 1 या 2 घंटे के भीतर खीस अवश्य ही पिलाना चाहिए। पहले 24 घंटों में पर्याप्त मात्रा में खीस देना चाहिए। जन्म के पहले 3 दिनों तक खीस पिलाना चाहिए, यह काफ़ी लाभदायक होता है। यह खीस बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। यदि समय पर बछड़े या बछिए को खीस ना मिले तो कई संक्रामक रोगों की चपेट में वो आ सकते हैं। अब बारी आती है आवास प्रबंधन के। नवजात के लिए यानी जो नवजात बछड़े हैं उनके लिए स्वच्छ, सूखा और हवादार आवास आवश्यक है। फर्श सूखा और साफ होना चाहिए, यानी जहाँ पर उन्हें रखा जाता है वहाँ पर फर्श सूखा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर यदि गर्मी का मौसम है तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि गर्मी से बचाव हो सके। यदि ठंडी का मौसम है तो ठंड से बचाव हो सके और वर्षा का मौसम है तो वर्षा से बचाव हो सके। पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है तो पर्याप्त धूप की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर उन्हें रखा जाता है तो धूप भी आना चाहिए। नियमित सफाई और कीटाणु शोधन किया जाना चाहिए, यानी वहाँ की साफ सफाई होनी चाहिए और वहाँ पर कीटाणु पनप ना सके इसके लिए कीटाणु शोधन की व्यवस्था करना चाहिए।
गंदे और नम वातावरण में दस्त, निमोनिया और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। खीस की अवधि यदि समाप्त हो गई है तो फिर बछड़ों को नियमित दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने की सावधानियाँ। दूध पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है। दूध शरीर के तापमान के समान गुनगुना होना चाहिए। निर्धारित समय पर दूध पिलाना चाहिए। बर्तन पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए और अधिक या कम मात्रा में दूध नहीं देना चाहिए। आमतौर पर बछड़े को उसके शरीर के वजन के अनुसार दूध दिया जाना चाहिए। जे पूरक आहार की भी शुरुआत होना चाहिए। 15 से 20 दिन की आयु से बछड़े को स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन और खनिज होना चाहिए। एक महीने की आयु के बाद मुलायम और पौष्टिक हरा चारा देना प्रबंध कर देना चाहिए, यानी हरे चारे का प्रबंध कर देना चाहिए, हरा चारा देना शुरू कर देना चाहिए। जन्म के कुछ दिनों बाद से ही बछड़े को साफ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। पानी पाचन और वृद्धि के लिए आवश्यक है। बछड़े के व्यवहार, भूख और गतिविधियों पर प्रतिदिन ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी भी प्रकार असामान्य लक्षण दिखाई दे तो फिर उसे नज़रअंदाज ना करें। क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार बछड़ों का टीकाकरण अपनाना चाहिए। आंतरिक परजीवियों से बचाव के लिए बछड़ों को समय समय पर कृमिनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उनका इलाज करवाना चाहिए, दवाइयां देना चाहिए। नवजात बछड़ों में होने वाले प्रमुख रोग दस्त, जो डायरिया है, डायरिया के नाम से जाना जाता है, यह नवजात बछड़ों में मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाता है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लक्षण होते हैं कि दस्त यानी पतला मल, कमजोरी, निर्जलीकरण और भूख कम लगना। इससे बचाव के लिए आप समय पर खीस पिलाएं बच्चों को, यानी जो बछड़े हैं। साफ पानी और स्वच्छ वातावरण रखें और जिस बर्तन से आप दूध पिलाते हैं उस बर्तन की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब एक बीमारी है निमोनिया। निमोनिया भी बछड़ों को लग सकता है। इसके लक्षण हैं कि खांसी, बछड़े का तेज सांस लेना, बुखार और नाक से श्राव होना। यदि ऐसे लक्षण हैं तो इससे बचाव के क्या उपाय होना चाहिए? इस तरह के यदि लक्षण हैं तो इसका इलाज करवाएं और ऐसा ना हो इसके लिए बचाव करना चाहिए। सूखा और हवादार आवास होना चाहिए। ठंड और नमी से बचाव होना चाहिए, गर्मी से बचाव होना चाहिए और पर्याप्त पोषण उनको मिलना चाहिए। अब नाभि जो संक्रमण है उससे भी बछड़ों को परेशानी हो सकती है। गंदी परिस्थितियों में नाल के माध्यम से संक्रमण हो सकता है। इसके बचाव के लिए जन्म के बाद आयोडीन का उपचार करना चाहिए और जहाँ पर प्रसव कराया जाता है पशुओं का, वो साफ सुथरा होना चाहिए। खनिज मिश्रण और विटामिन का भी काफ़ी महत्व होता है। बछड़ों की तेज़ वृद्धि के लिए खनिज मिश्रण और विटामिन आवश्यक है। बंधुओं, कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा, जिंक, विटामिन ए, डी और ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण से हड्डियां मजबूत बनती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। गर्मी और सर्दी के मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के मौसम में छायादार स्थान होना चाहिए, पर्याप्त स्वच्छ पानी देना चाहिए और गर्मी से बचाने के लिए उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहां पर आप अपने बछड़ों को रखते हैं। सर्दी का यदि मौसम है तो बिछावन के लिए सूखे भूसे का प्रयोग कीजिए।
ठंडी हवा से बचाव करने का उपाय कीजिए और बच्चे को यानी नवजात बछड़ों को गुनगुना दूध पिलाइए। जब बछड़ा या बछिया पर्याप्त मात्रा में स्टार्टर और चारा खाने लग जाए और उसकी आयु लगभग 2 से 3 माह की हो जाए तब धीरे धीरे दूध छुड़ाया जा सकता है। अचानक दूध बंद करना नहीं चाहिए। जी हाँ, नवजात बछड़ा पालन में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। जन्म के 2 घंटे के भीतर खीस अवश्य पिलाएं, नाभि को आयोडीन से उपचारित करें, स्वच्छ और सूखा आवास की व्यवस्था करें, संतुलित पोषण की व्यवस्था करें, नियमित टीकाकरण और कृमिनाशन इसका उपयोग करें। यदि बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से आप परामर्श करें। स्वच्छ पानी की उपलब्धता कराएं और बछड़े की वृद्धि का नियमित आप रिकॉर्ड रखें। जी, कहने का तात्पर्य है किसान भाई बंधुओं के नवजात बछड़ों की उचित देखभाल, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये पशुधन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं और हमारे परिवार के सदस्य के समान ही होते हैं। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका यदि ध्यान रखा जाए तो आप अपने पशुधन की सुरक्षा कर सकते हैं और उनसे उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो बंधुओं ये तो हुई बातें पशुधन की, नवजात बछड़ों की देखभाल की, और आइए अब हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, यानी कि चर्चा को आगे बढ़ाएं और जान लेते हैं कि मछली पालन उसका क्या लाभ है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है बंधुओं, ये तो हम सभी जानते हैं, और आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए विभिन्न नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। एकीकृत मत्स्य पालन यह एक ऐसी वैज्ञानिक और व्यवहारिक पद्धति है जिसमें मछली पालन को कृषि, पशुपालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, बागवानी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, उत्पादन लागत को कम करना और किसानों की आय को कई गुना बढ़ाना है। जी, एकीकृत मत्स्य पालन का अर्थ है फसल, मवेशी, मछलियों का एक साथ पालन करना। इसमें एक गतिविधि से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग दूसरी गतिविधि में किया जाता है। उदाहरण के लिए पशुओं का गोबर तालाब में प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग होता है जिससे प्लवक उत्पन्न होते हैं और वहीं मछलियों का भोजन बनते हैं। इसी प्रकार तालाब का पोषक तत्वों से भरपूर पानी खेतों की सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था में अपशिष्ट को बेकार नहीं समझा जाता बल्कि उसे एक संसाधन के रूप में पुनर्चक्रित किया जाता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रणाली के रूप में माना जाता है। जी हाँ, वर्तमान समय में कृषि भूमि का आकार लगातार घट रहा है और खेती की लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। एकीकृत मत्स्य पालन एक ही भूमि जल संसाधन से कई प्रकार की आय प्राप्त करने का अवसर देता है। इसके प्रमुख कारण हैं भूमि और जल का अधिकतम उपयोग, उत्पादन लागत में कमी, अतिरिक्त रोजगार के अवसर, पोषण सुरक्षा में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, जोखिम का विभाजन जिससे किसी एक गतिविधि में नुकसान होने पर दूसरी गतिविधि से आय बनी रहती है। मछली सह डेयरी पालन, इस मॉडल में गाय या भैंस का गोबर तालाब में डाला जाता है जिससे प्राकृतिक भोजन उत्पन्न होते हैं। इससे मछलियों की वृद्धि तेज होती है और बाहरी आहार का खर्च कम होता है। अब दूसरा है मछली सह बतख पालन। बतखें तालाब की सतह पर विचरण करती हैं और उनका मल सीधे तालाब में गिरता है
यह मछलियों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ ही बतखें तालाब में मौजूद कीटों और खरपतवारों को भी नियंत्रित करती हैं। जी हाँ, अब बारी आती है मछली सह मुर्गी पालन की। मुर्गी शेड को तालाब के किनारे या ऊपर बनाया जाता है। मुर्गियों का मल तालाब में पहुंचकर प्राकृतिक खाद का कार्य करता है, जिससे मछलियों के लिए भोजन उपलब्ध होता है। अब मछली सह कृषि प्रणाली। तालाब का पानी फसलों की सिंचाई में उपयोग किया जाता है और यह पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। तालाब के किनारों पर सब्जियां, फलदार पौधे और चारा फसलें उगाई जा सकती हैं। बंधुओं, मछली सह सुअर पालन भी किया जाता है। सुअर पालन से निकलने वाला अवशिष्ट तालाब में खाद के रूप में उपयोग होता है। यह प्रणाली विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और कुछ अन्य राज्यों में लोकप्रिय है। वहाँ पर यह काफ़ी लोकप्रिय है। एकीकृत मत्स्य पालन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आर्थिक उपयोगिता है। जहाँ पारंपरिक मछली पालन से केवल मछलियों की बिक्री में आय होती है, वहीं एकीकृत प्रणाली में मछली, दूध, अंडे, मांस, सब्जियां, फल और अन्य उत्पादों से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। विशेषज्ञों की यदि हम माने तो विशेषज्ञों के अनुसार एकीकृत प्रणाली अपनाने से पारंपरिक खेती की तुलना में 30-100% तक अधिक आय अर्जित की जा सकती है और इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं। एकीकृत मत्स्य पालन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जल और भूमि संसाधनों का संरक्षण होता है, प्रदूषण में कमी आती है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। यह प्रणाली जीरो वेस्ट फार्मिंग की अवधारणा को भी साकार करती है, जिसमें किसी भी संसाधन को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। पोषण सुरक्षा में योगदान। हमारे देश में कुपोषण आज एक बड़ी चुनौती के रूप में है। बंधुओं, मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत है। वहीं दूध, अंडे, सब्जियां भी पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एकीकृत मत्स्य पालन परिवारों और संतुलित तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं, करती रही हैं। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, उसके माध्यम से मत्स्य पालन, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन, एकीकृत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, तकनीकी मार्गदर्शन किया जाता है और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें चुनौतियां नहीं हैं, चुनौतियां तो हैं, क्योंकि इसके सफल संचालन के लिए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तकनीकी जानकारी का अभाव, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता, प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता, रोग प्रबंधन, जैव सुरक्षा, बाजार तक पहुंच की समस्या, इन चुनौतियों को प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। एकीकृत मत्स्य पालन केवल एक उत्पादन प्रणाली नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम भी है। यह काम कम लागत, अधिक उत्पादन और अधिक आय की अवधारणा पर आधारित है। आज जब कृषि क्षेत्र को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की आवश्यकता है, तब एकीकृत मत्स्य पालन किसानों के लिए एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है। बंधुओं,
यदि वैज्ञानिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लिया जाए तो एकीकृत मत्स्य पालन न केवल आय दोगुनी करने में सहायक होगा बल्कि देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी मजबूत आधार प्रदान करेगा और यह वास्तव में आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ बंधु, तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका यदि हम ध्यान दें तो उस पर हम काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और अपने रोज़गार को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई रोज़गार के अवसर हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है बंधुओं कि हम एक ही कार्य पर निर्भर करें, हमें आय के लिए कई प्रकार के कार्य करना चाहिए। और घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम कई रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब सब्जियों की ही बातें ले लीजिए, बातें कर लीजिए कि घर के आसपास यदि हम थोड़ी सी भूमि पर सब्जियों का उत्पादन करें, कुछ ऐसे फल लगाएं, फलों के वृक्ष लगाएं, तो उससे भी हम आय कमा सकते हैं, क्योंकि हरी ताज़ा सब्जियां लोगों को भाती हैं और इसकी मांग होती है। आज के समय में हर कोई अपने पोषण की ओर ध्यान दे रहा है, अपने स्वास्थ्य की ओर जागरूक है और वह चाहता है कि उसे हरी सब्जियां मिलें। तो इस दिशा में आप घर के आंगन में या आसपास आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो फिर आप सब्जियों का उत्पादन कीजिए, फल लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, उससे पर्यावरण का भी संरक्षण होता है और समय समय पर फल फूल हमें प्राप्त होते रहते हैं और इससे हम आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं जिसे हम अपना सकते हैं। और कहते हैं ना कि यदि हमारे पास हुनर है तो फिर हमारे लिए रास्ता अपने आप ही खुला रहता है। जी हाँ, आवश्यकता होती है बस थोड़ी सी हिम्मत रखने की। आप यदि अपने आप में हिम्मत रखते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं और कृषि के अलावा आप समय समय पर दूसरे संसाधनों के माध्यम से भी अपने आप को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो हुई खेती संबंधी कुछ बातें। और आइए बातें करते हैं बंधुओं कि गर्मी के मौसम में हमारे जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे घर के पालने वाले हों या फिर चाहे बाहरी हों, तो उनके लिए भी कुछ दाने चारे की व्यवस्था हमें करना चाहिए। अपने घर के आंगन में आसपास उनके पानी की व्यवस्था रखें, दाने चारे की व्यवस्था रखें और उनके बचाव का उपयोग करें। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए और हम इसके साथ साथ अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, पशु पक्षी को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब इसी के साथ दीजिए हमें विदा, नमस्कार। कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का ग्रामीण कार्यक्रम में। बंधुओं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ खेती की सफलता काफ़ी हद तक सिंचाई पर निर्भर करती है। जी हाँ, और बदलते मौसम, घटते हुए भूजल स्तर और बढ़ती हुई जल संकट की समस्या के बीच किसान भाई बंधुओं के लिए ऐसी सिंचाई तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो जाता है जो कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित कर सके। जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या जल की ही है और जल को सुनिश्चित करना यानी कि ऐसा हम तकनीक अपनाएं जिससे कम सिंचाई की व्यवस्था में भी अच्छी फसल हम ले सकें, कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। इस दिशा में फव्वारा सिंचाई प्रणाली यानी कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एक प्रभावी और आधुनिक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। जी हाँ, फव्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है बंधुओं जिसमें पानी को पाइपों और विशेष नोजलों के माध्यम से दबाव के साथ खेत में वर्षा जैसी फुहारों के रूप में फैलाया जाता है। यह प्राकृतिक बारिश की तरह पूरे खेत में समान रूप से पानी पहुंचाती है। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में यह प्रणाली
पानी, समय और श्रम तीनों की बचत करती है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ बंधु, स्प्रिंकलर सिंचाई, यह पानी को पंप की सहायता से पाइपों में दबाव के साथ इसे भेजा जाता है। पाइपों पर लगे स्प्रिंकलर हेड या नोजल पानी को छोटे छोटे कणों में बदलकर खेत में चारों ओर छिड़कते हैं और इससे पानी पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है और फसल को आवश्यक नमी प्राप्त होती है। यह तकनीक गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, आलू, प्याज, लहसुन, सब्जियां, बागवानी वाली फसलें, चारा फसलें, दलहनी तिलहनी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। जी हाँ किसान भाई बहन, स्प्रिंकलर सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं। जल संरक्षण में यह अत्यधिक प्रभावी है। आज अधिकांश क्षेत्रों में भूजल की समस्या है। जी हाँ, क्योंकि जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ऐसे समय में फव्वारा सिंचाई हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। यानी किसान भाई बंधुओं के लिए, कृषि कार्य करने वालों के लिए यह वरदान के रूप में सामने आया है। इस तकनीक से पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 30-50% तक पानी की बचत संभव है। पानी सीधे फसल क्षेत्र में नियंत्रित मात्रा में पहुँचता है, जिससे बहाव, रिसाव और वाष्पीकरण के कारण होने वाली बर्बादी कम हो जाती है। कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जब फसल को समान मात्रा में पानी मिलता है तो उसकी वृद्धि बेहतर होती है। पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। बंधुओं, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फव्वारा सिंचाई अपनाने से फसल उत्पादन में 20-50% तक वृद्धि होती है और ऐसा देखा गया है। विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी वाली फसलों में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पारंपरिक सिंचाई में खेत के कुछ हिस्सों में अधिक पानी पहुंचता है और कुछ भाग सूखे रह जाते हैं और इससे पौधों की वृद्धि असमान होती है। यानी कहीं तो फसल बढ़ जाती है और कहीं पर छोटी रह जाती है। जो ये फव्वारा प्रणाली है, इसमें घूमने वाले नोजल पूरे क्षेत्र में समान रूप से पानी को वितरित करते हैं। इसके कारण सभी पौधों को बराबर नमी मिलती है, फसल एक समान विकसित होती है। फव्वारा सिंचाई उबड़ खाबड़ और ढलान वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। बंधुओं, अनेक क्षेत्रों में खेत समतल नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में नहर या बाढ़ सिंचाई करना कठिन और खर्चीला होता है। स्प्रिंकलर प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके लिए भूमि समतलीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहाड़ी, ढलानदार, असमान और रेतीली भूमि में भी यह प्रभावी ढंग से कार्य करती है। फव्वारा सिंचाई मिट्टी के कटाव को रोकती है। यह सिंचाई में पानी तेज गति से बहता है, जो बाढ़ वाली सिंचाई होती है उसमें, जिससे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। लेकिन फव्वारा सिंचाई में पानी बूंदों के रूप में गिरता है, इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है और उसकी संरचना भी सुरक्षित रहती है। खेत की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है। नियंत्रित सिंचाई के कारण केवल आवश्यक क्षेत्र में ही नमी उपलब्ध होती है और इससे अनावश्यक जो खरपतवार हैं उसकी वृद्धि कम होती है। जी हाँ, खरपतवार कम होने से बंधुओं फसल को पोषक तत्व अधिक मिलते हैं और निराई गुड़ाई पर होने वाला खर्च घटता है। जी, उर्वरकों और कीटनाशकों का बेहतर उपयोग भी होता है। स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से पानी के साथ घुलनशील उर्वरक और पौध संरक्षण रसायन दिए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। इससे उर्वरक सीधे पौधों तक पहुंचते हैं, उनका उपयोग दक्षता बढ़ती है और खाद की बर्बादी कम होती है, साथ ही साथ श्रम लागत में भी कमी आती है। बंधुओं, पारंपरिक सिंचाई में खेतों में मेड़ बनाना, पानी का प्रवाह नियंत्रित करना, लगातार निगरानी करना पड़ता है।
लेकिन जो फवा

प्रणाली है, स्प्रिंकलर प्रणाली है। इसमें एक बार सेटअप करने के बाद पूरे खेत की सिंचाई स्वतः हो जाती है। इससे श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है और किसान अपना समय अन्य कृषि कार्यों में लगा सकते हैं। जी, पाले से भी फसलों की सुरक्षा होती है। सर्दियों के मौसम में पाला पड़ने से आलू, सब्जियां, बागवानी फसलें प्रभावित होती हैं, लेकिन जब स्प्रिंकलर के द्वारा लगातार पानी का छिड़काव से पौधों का तापमान नियंत्रित रहता है, तो इससे पाले के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। अत्यधिक गर्मी से भी राहत मिलती है। जी हाँ, जो अभी अत्यधिक गर्मी का मौसम पड़ रहा है, ऐसे में मौसम में तापमान बढ़ने पर पौधों में नमी की कमी हो जाती है, और ये जो गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, यह सिंचाई यानी कि फव्वारा सिंचाई खेत के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करती है। इससे पौधों पर गर्मी का तनाव कम होता है और उसकी वृद्धि बेहतर बनी रहती है। अब आइए जान लेते हैं बंधुओं कि किन किन फसलों के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई फायदेमंद है। स्प्रिंकलर सिंचाई गेहूं, चना, मसूर, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, सब्जियां, फूलों की खेती, चारा फसलें, फलदार बाग, इन सब के लिए फायदेमंद है। स्प्रिंकलर प्रणाली के मुख्य घटक क्या हैं जानते हैं। जल स्रोत, कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, नदी या जलाशय। दूसरा, पंप सेट, पानी को दबाव के साथ पाइपों में भेजता है। तीसरा है मुख्य पाइपलाइन, पंप से पानी को खेत तक पहुंचाती है। लेटरल पाइप, मुख्य पाइप से पानी लेकर विभिन्न हिस्सों में वितरित करते हैं। स्प्रिंकलर हेड या नोजल, या पानी को फुहारों के रूप में छिड़कते हैं। फिल्टर, पानी में मौजूद रेत और कचरे को ये रोकते हैं। वाल्व और नियंत्रण इकाइयाँ पानी के दबाव प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। और आइए अब बातें करते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रकार के। पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें पाइप और स्प्रिंकलर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाए जा सकते हैं। सेमी परमानेंट सिस्टम, इसमें मुख्य पाइप स्थायी होते हैं जबकि स्प्रिंकलर और लेटरल बदले जा सकते हैं। सेंटर पीवोट सिस्टम, बड़े खेत में उपयोग होने वाली आधुनिक प्रणाली, इसमें स्प्रिंकलर एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। रेनगन स्प्रिंकलर, यह उच्च दबाव वाला स्प्रिंकलर होता है, बड़े क्षेत्र में पानी पहुंचाने में यह सक्षम होता है। गन्ना, गेहूं और चारा फसलों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। मिनी स्प्रिंकलर, यह सब्जियों, नर्सरी और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। अब यह जानना भी जरूरी है बंधुओं कि फव्वारा सिंचाई में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। इस सिंचाई में तेज हवा के समय सिंचाई ना करें, नोजलों की नियमित सफाई करें, फिल्टर का समय समय पर रखरखाव करें, उचित दबाव बनाए रखें, खराब पाइपों और जोड़ों की मरम्मत करवाते रहें, सिंचाई का समय सुबह और शाम को रखें ताकि वाष्पीकरण कम हो। स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने से प्रारंभिक लागत अधिक लग सकती है, लेकिन कुछ वर्षों में इसकी लागत वसूल हो जाती है। जी, और इससे पानी की बचत होती है, बिजली की खपत कम होती है, श्रम लागत घटती है, उर्वरकों का उपयोग कम होता है, उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं सरकारी योजनाएं और सब्सिडी के बारे में। केंद्र और राज्य सरकारें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। अनेक राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों को 55 से 90% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। किसान अपने ज़िले के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित पोर्टल पर संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, कि जल संकट के इस दौर में, जब चारों
और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पानी का संकट होता है गर्मी के मौसम में, तो ऐसे में जल संकट के इस दौर में स्प्रिंकलर सिंचाई केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि टिकाऊ कृषि की आवश्यकता बन चुकी है। यह कम पानी में अधिक उत्पादन, बेहतर फसल गुणवत्ता, मिट्टी संरक्षण, श्रम बचत और किसानों की आय बढ़ाने प्रभावी, इन सब का एक प्रभावी माध्यम है। यदि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करते हैं तो न केवल उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि भविष्य के जल संसाधनों का भी आपको भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि आज फव्वारा सिंचाई को हर बूंद से अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जा रहा है और इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये तो हुई बंधुओं स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, इन सब के बारे में हमने अभी जाना। और अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जान लेते हैं बकरी पालन के बारे में कि बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। हमारे सामने प्रश्न ये उठता है बंधुओं की कम लागत में हम अधिक मुनाफे वाला कौन सा कार्य करें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके लिए कई तरह के माध्यम हैं जो किसान भाई बंधु अपने आय को बढ़ाने के लिए अपनाते हैं। बदलते समय में जब खेती की लागत बढ़ रही है और छोटे छोटे किसानों के सामने आय की चुनौती होती है, तब बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय बनकर उभरा है जो कम निवेश, कम जोखिम और अधिक लाभ की संभावनाएं प्रदान करता है। यही कारण है कि आज बकरी पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसानों का चलता फिरता बैंक या ATM भी कहा जाता है। बकरी पालन न केवल आय को व्यवस्थित करता है बल्कि महिलाओं, युवाओं और भूमिहीन परिवारों के लिए रोजगार का एक अवसर भी प्रदान करता है। हमारे देश में बकरी के दूध, मांस और जैविक खाद की बढ़ती मांग ने इस व्यवसाय को और अधिक लाभदायक बना दिया है। बकरी पालन का महत्व। बंधुओं, बकरी पालन सदियों से किया जा रहा है लेकिन अब इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर किसान बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए बकरी पालन पर निर्भर हैं। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह व्यवसाय अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इसमें अधिक भूमि या बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। बकरी को गरीब आदमी का गाय भी कहा जाता है। जी हाँ, गरीब आदमी की गाय, क्योंकि इसकी देखभाल सरल है और यह सीमित संसाधनों में अच्छा उत्पादन देती है। बकरियाँ झाड़ियों, पेड़ की पत्तियों, खेतों में उपलब्ध प्राकृतिक वनस्पतियों पर आसानी से जीवित रह सकती हैं। इससे चारे का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। बंधुओं, बकरी पालन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कम प्रारंभिक लागत है। जहां डेयरी फार्म या भैंस पालन के लिए लाखों रुपए का निवेश करना पड़ता है, वहीं बकरी पालन कुछ हज़ार रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। एक छोटा किसान 5 से 10 बकरियों के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। जी हाँ, बकरियों के लिए महंगे शेड या विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। बंधुओं, आपके पास जो स्थानीय सामग्री है, कम लागत में आप उनके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। यही कारण है कि ये व्यवसाय ग्रामीण गरीबों और नए उद्यमियों के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। महिलाओं के लिए भी ये रोजगार का बेहतर साधन है। जी, बकरी पालन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बंधुओं, चूँकि बकरियाँ आकार में छोटी होती हैं और उनकी देखभाल अपेक्षाकृत आसान होती है, इसलिए महिलाएं घर के अन्य कार्यों के साथ साथ बकरी पालन सफलतापूर्वक कर सकती हैं। देश के कई राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से बकरी पालन करके अपनी आय बढ़ा रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ती है। बकरी पालन को लाभदायक बनाने वाला सबसे बड़ा कारण इसकी तेज़ प्रजनन क्षमता भी है।
अधिकांश बकरियां 15 से 18 माह की आयु में प्रजनन के योग्य हो जाती हैं और वर्ष में लगभग 2 बार बच्चे देने की क्षमता रखती हैं। कई नस्लों में एक बार में 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं। इससे बकरियों की संख्या तेजी से बढ़ती है और किसान को कम समय में अधिक आय प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान 10 बकरियों से शुरुआत करते हैं तो 2 से 3 वर्षों में उनका झुंड कई गुना बढ़ सकता है। यही कारण है कि बकरी पालन को तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक धन की आवश्यकता पड़ने पर किसान अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में बकरी पालन एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। बकरियों को किसी भी समय स्थानीय बाजार में बेचकर नगद धन प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्च, विवाह, अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए आसानी से 1 या 2 बकरियां बेचकर आर्थिक ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसी विशेषताओं के कारण बकरी पालन को किसानों का ATM भी कहा जाता है। बकरी का मांस अत्यधिक लोकप्रिय है और अन्य मांस की तुलना में बकरी का मांस अधिक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इसमें वसा अपेक्षाकृत कम होती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि बाजार में इसकी कीमत अन्य पशुओं के मांस के तुलना में काफ़ी अधिक होती है। बकरी का दूध अत्यंत पौष्टिक माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बकरी का दूध पचने में आसान होता है और कई लोगों को गाय के दूध की तुलना में अधिक उपयुक्त लगता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए इसे काफ़ी लाभकारी माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी बकरी के दूध की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी कीमत सामान्य दूध के तुलना में अब कई गुना अधिक मिलती है। जी, जैविक खेती के लिए उत्कृष्ट खाद। बकरी पालन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसकी जो मल होती है उससे प्राप्त होने वाली खाद जैविक खाद है। बकरी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है और वर्तमान समय में जैविक खेती के बढ़ते चलन के कारण बकरी खाद की व्यवस्था यानी बकरी खाद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई किसान तो खाद बेचकर भी अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। जी बंधुओं, बकरी पालन के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं है। सीमित स्थान में अधिक संख्या में आप बकरियां पाल सकते हैं। जो किसान भूमिहीन है, जिनके पास कम जमीन है, उनके लिए भी यह व्यवसाय विशेष रूप से लाभकारी होता है। गांवों के अलावा कस्बों, अर्धशहरी क्षेत्रों में भी बकरी पालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बकरियां अत्यंत सहनशील पशु मानी गई हैं और विभिन्न प्रकार के जलवायु में आसानी से ये रह सकती हैं, चाहे गर्म क्षेत्र हो, शुष्क इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, बकरियां वहां भी अपने आप को अनुकूलित कर लेती हैं। यही कारण है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में बकरी पालन सफलतापूर्वक किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं बकरी पालन के प्रमुख नस्लों के बारे में। किसान बंधुओं, भारत में कई उत्कृष्ट नस्लें उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जमुनापारी, बीटल, सिरोही, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी। इन नस्लों का चयन स्थानीय जलवायु, बाजार की मांग और पालन के उद्देश्य यानी कि आप दूध या मांस जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसके अनुसार किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक बकरी पालन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं, उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। बंधु, जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे वो पशुधन के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, तो हमें तकनीकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। स्वस्थ और अच्छी नस्ल की बकरियों का चयन करना चाहिए जब भी आप बकरी पालन करते हैं। स्वच्छ और हवादार शेड की व्यवस्था करें, यानी जहाँ पर आप बकरियों को रखते हैं वहाँ स्वच्छ और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए। बकरियों को संतुलित आहार
और पर्याप्त स्वच्छ पानी हमेशा उपलब्ध कराएं। समय समय पर आप अपनी बकरियों को टीकाकरण और कृमिनाशक

0: दवाइयाँ दीजिए। यदि कोई पशु बीमार हो गया है तो बीमार पशु को अलग रखिए। प्रजनन और बच्चों के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और समय समय पर आप अपने पशुओं की जांच कराते रहें, पशु चिकित्सक से आप नियमित सलाह भी लेते रहें। सरकारी योजनाएं और सहायता भी दी जाती है बकरी पालन व्यवसाय के लिए, उसे भी जानना आवश्यक है। बंधुओं, केंद्र एवं राज्य सरकारें बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। कई योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अनुदान प्रदान किया जाता है, बैंक से ऋण और बीमा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। यदि किसान वैज्ञानिक तरीकों से बकरी पालन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तो यह व्यवसाय ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति बदलने की क्षमता रखते हैं। जी किसान भाई बंधुओं, बकरी पालन आज के दौर में केवल एक पारंपरिक गतिविधि नहीं है बल्कि एक लाभदायक कृषि उद्यम बन चुका है। कम लागत, तेज प्रजनन क्षमता, मांस और दूध की बढ़ती हुई मांग के अनुसार हर समय नगदी उपलब्ध कराने की क्षमता होती है इसमें, तो यह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवसाय के रूप में इसे लाभदायक बनाया जा सकता है। ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में बकरी पालन का व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है उचित प्रशिक्षण की, तकनीकी जानकारी की, वैज्ञानिक प्रबंधन की और बेहतर नस्लों के चयन के साथ यह व्यवसाय जीवन में आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिख सकता है। जी हाँ, क्योंकि जब आप इसे व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपको अच्छा लाभ हो, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके बारे में जानें, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में जानें, कौन सी नस्ल की बकरियों का चयन करना है यह आप जानें और बकरी पालन के लिए क्या महत्वपूर्ण है यह सब कुछ जान लेना आवश्यक होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जा रहा है। पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसने पिछले कुछ वर्षों में किसान भाई बंधुओं युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यह एक अच्छे व्यवसाय के रूप में लोग इसे अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें सीमित संसाधनों, कम पूंजी, कम भूमि वाले किसान भी इसे आसानी से अपना सकते हैं। यही कारण है कि बकरी को गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। आज बकरी पालन न केवल पारंपरिक जीवोपार्जन का साधन रह गया है बल्कि एक संगठित और लाभदायक कृषि उद्यम के रूप में यह उभर रहा है और इसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है। तो आप भी इसे व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो ये तो हुई बकरी पालन व्यवसाय की बातें और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, ग्रामीणों कृषकों को संबोधित कार्यक्रम साथी ग्रामीण सभा। चर्चा में स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ, आज के विचार में बकरी पालन से फायदे और अब आइए इस कार्यक्रम से अब आइए कुछ ही पलों में हम सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में हम शामिल होंगे शाम 6:55 पर। 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल।

0: लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मिट्टी

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी MSP में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हमने जरूर किया है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया बबलू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
0: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए

0: स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य, मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर BLO की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, उसके अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
0: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
2: प्रोडक्शन तो है लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
3: मॉनसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मॉनसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मॉनसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
0: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीद

0: ने पर लगाई रोक, जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी, 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड टी20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत, छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय में पतंजलि योग समिति सहित कई सरकारी संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर के बिगन देवी स्मृति भवन में पतंजलि योग समिति द्वारा संचालित नियमित योग शिविर का संचालन कर रहे प्रशिक्षक उपकार गुप्ता से हमने योग के विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने योग के लाभ के विषय में जानकारी दी।
2: मैं रामदेव बाबा के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ शुरू किया हूँ और यहाँ से योग करके बहुत सारे भाई बहन बहुत फायदा उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का स्थान पूरे विश्व में जन जन को जागृत किया है, इससे हमारे कक्षा के लोग को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। बहुत लोग को बहुत सारी असाध्य बीमारियां थी, वो सब ठीक हो रहा है। मैं गढ़वा वासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि योग में जुड़िए और प्रतिदिन योग कीजिए।
1: इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में भी नियमित योग शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस योग शिविर में अनेकों युवा पुरुष और महिलाओं को भाग लेते देखा गया। हमने यहाँ नियमित योग शिविर में भाग ले रहे एक युवा धीरज कुमार से बातचीत की, तो उन्होंने बताया,
3: जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योग करके निरोग रहने का अपील किया है, तब से हम बिरसा मुंडा पार्क में आकर प्रतिदिन योग करता हूँ। हम पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। योग करने से मैंने 3 वर्षों में 10 किलो वजन कम किए हैं। योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है।
1: जिले में पिछले दिनों दिशा की बैठक सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गढ़वा जिले में चल रही विशेष रूप से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की गंभीरता से समीक्षा की गई। वहीं कई ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके समाधान के लिए पहल करने का संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया,
4: आज मुख्यतया पिछले मीटिंग में जो प्रश्न उठाए गए थे या जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी, उन प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में हो रही योजनाओं की प्रगति की भी चर्चा की। जिन विभागों के प्रगति प्रतिवेदन में कमी पाई गई, उन कमियों की ओर उन विभागों का ध्यान आकर्षित कराया गया। कमेटियां भी

0: बनाई गई है ताकि जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके यदि कोई पदाधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में उन कमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सके। किसानों को धान का पैसा अभी भी नहीं मिला है, उन किसानों को धान का पैसा का भुगतान शीघ्र कराया जाए। जो सड़कें बनाई जा रही हैं उन सड़कों की गुणवत्ता यदि सुनिश्चित नहीं की गई है तो उसके लिए दोषी पदाधिकारियों को कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। यह सरकार के द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई माध्यम से उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
1: गढ़वा जिले में इस समय लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि बीच बीच में हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं के कारण तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, लेकिन लगातार कड़ी धूप से लोग काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोग बेसब्री से मानसून के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
2: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सभा। जिले में आजकल प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 हो चुके हैं। आइए हम अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आपने सुना फिल्म मर्डर के इस गाने को मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह, स्वयं भट्ट की आवाज़ में, मिथुन के संगीत थे शाहिद क्वादरी के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

अभी आपने सुना फिल्म तेरे नाम के इस गाने को उदित नारायण की आवाज़ में। उदित नारायण और राघव की आवाज़ में जैलेश के बोल थे और शर्वणी के संगीत।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम अब उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें संकलन निर्वाचन मीनाक्षी कर्ण के हैं।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाहे सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में

में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं जैसे कि B Pharma यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। B Pharma स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए M Pharma कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का Pharm D पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक BA, MA, BSc, MSc कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय MPhil एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो MBBS के अलावा
बहुत सारे पाठ्यक्रम

और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और

0: का विकास, संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान, और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं, और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं, और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें, संकलन निर्वाचन मीनाक्षी कर्ण के थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पलों में रात्रि के 8 बजने को है। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से कुछ ही पलों में। श्रोता

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट में। अभी आपने सुना फिल्म अब्बास के इस गाने को कुणाल गांजेवाला कल्पना की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं फिल्म अश्क के इस गाने को सुभा मुद्गल की आवाज़ में। अनु मलिक के संगीत है गुलजार के बोल।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा, ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ। और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड
3: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेटमेड्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी जीरो प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ। तो फिर समझदारी दिखाओ, नेटमेड्स पे आओ।
2: तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
2: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने शब्द से दिखाया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
2: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए, और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
2: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर।
4: सोचो, बाइक चलाते हुए अगर छोटा सा एक्सीडेंट या ब्रेकडाउन हो जाए, क्लेम प्रोसेस, पेपर वर्क, इसलिए दीजिए अपने बाइक को स्मार्ट प्रोटेक्शन। ICICI लोम्बार्ड टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑन आई टेक केरा, ताकि आपकी हर राइड रहे टेंशन फ्री। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एड ऑन जैसे 0 depreciation और रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस को बनाए एफर्टलेस। डाउनलोड आई टेक केयर ऐप नाउ।
2: वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
2: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
5: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
7: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
6: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
8: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
5: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
9: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal

0: अजम है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाजे डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्जान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म ताउन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आज़ाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निज़ामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख़्वाह इंतजाम किए जाएँ। फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को ख़त्म होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूरोप के 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का यह दौरा खसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खसूसी आलमी कलीदी शराकत दारी का दर्जा अता करने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की यह पहली दो तरफा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वजीर आजम G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के इवान वापस लौटेंगे जहां भारत आलमी खित्ते जनूब की अहम आवाज के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की ज़मीनें ले रही है और इन ज़मीनों को BSF के हवाले कर रही है। वजीर आला ने कहा कि जमीन की मुंतकली का यह अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को कतई रोका जा सके।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और ज़िला इंतजामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजाम का जायजा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिल कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी सरहदों में कारोबार के तहफ्फुज़, सलामती और इस्तेहकाम को कमज़ोर करती है। अमरीका के शाज़ डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तिलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाक़यात को कतई तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। उनका ये बयान भारत की जानिब से अमेरिका के शॉज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वाशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को खतरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से ज़ोर देकर कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनक़द होने के बारे में बात करना कबल अज वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के ज़्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। मज़ीद तफसील मगरबी एशिया के हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी एशिया के लिए ये नई सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुजव्वजा हमले रोक देने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि खित्ते में वसी तर तनाज़े को टाला जा सकता है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि किसी भी हतमी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई है और कई अहम उमूर हल तलब हैं। अहम नुकात में ईरान का एटमी प्रोग्राम, मुंजमिद इसासों को जारी करना और आबनाए हुरमुज़ के तरफ मुस्तकबिल में सिक्योरिटी बंदोबस्त शामिल हैं। اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی

0: कोरिया के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए ड्रोन कार्रवाई का हुक्म देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के ऐलान को जायज ठहराने का कसूरवार पाया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जेल में बंद साबिक सदर को दुश्मन को फायदा पहुंचाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का कसूरवार करार दिया। साबिक वजीर दिफा किम योंग हुन को भी इस कार्रवाई के दौरान उनके रोल की बिना पर 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर यून ने शुमाली कोरिया को मुश्तैल करने के लिए अक्टूबर 2024 में ड्रोन मिशन का हुक्म दिया और मार्शल लॉ नाफिज करने का पस मंजर तैयार किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी कायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत अपनी जुर्रतमंदाना पहल की बदौलत उमंगों भरे इकदाम के जरिए आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ यकजा किया गया, जिससे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए, जिससे मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक नई तवानाई पैदा हुई है। जबकि भारत पहले का नज़रिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुँचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नजर आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहदा के दो इदारों को 30 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन वीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी

0: में रोल था छोटी लड़की का
1: जी,
0: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर, तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
1: जी।
0: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा जैसे आप कहें, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
1: अच्छा, उस समय
0: और मुझे
1: नाम
0: वो
1: मतलब?
0: नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
1: जी। बिल्कुल।

2009 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

0: दम।
1: सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

कुमारी श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं।
1: जी
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा
0: अच्छा। जिनके साथ मैंने काम नहीं किया।
1: जी दोस्तों, आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

यादें में। श्रोताओं, फिल्मी गीत मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे बीते हुए समय, भावनाओं और इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज है। पुराने गीत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से नगमे के साथ, और एक घंटे का ये सफ़र है श्रोताओं आपके साथ, तो बने रहे हमारे साथ कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ।

0: फिल्म खुद गर्ज के इस गाने को साधना सरगम, मोहम्मद अजीज की आवाज में, इंदिवर के बोल, राजेश रोशन के संगीत। अब आइए सुनते हैं हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, जतिन ललित के संगीत। फिल्म का नाम है खामोशी।
1: फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म गर्लफ्रेंड के इस गाने को श्रेया घोषाल, सोनू निगम की आवाज़ में, परवीन भारद्वाज के बोल थे, डब्बू मलिक के संगीत।

और अब आइए सुनते हैं, अभी आपने सुना फिल्म मुस्कान के गाने को, अनुराधा पौडवाल सोनू निगम की आवाज में, समीर के बोल थे और निखिल विनय के संगीत। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज में, देव कोहली के बोल, आनंद राज आनंद के संगीत, फिल्म का नाम शिकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने

0: का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: जमीन हैंड ओवर करने का काम कर दिया.
3: द वर्क ऑफ हैंडिंग ओवर द लैंड हैज बीन कंप्लीटेड. सो फार वी हैव हैंडेड ओवर लैंड कवरिंग नियरली 100 किलोमीटर्स इन नॉर्थ बंगाल एडजॉइनिंग द चिकन स्नेक कॉरिडोर. द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज ऑलरेडी बिगन द फेंसिंग वर्क. वी विल कंप्लीट दिस टास्क.